रेडबहादुर एक्सेस समय गहर्ज का साथ ही इंटरनेट अनलाइन को www.redbahadur.org मार्फत संसार भर के साथ प्रसारण भइरहेको हो। बिहान 6:45 बजे को खबर में ब्रेक को नमस्कार। खबर को शुरू में मुख्य मुख्य खबर। साढ़े चार दशक को राजनीतिक यात्रा पछि बोलबहादुर अधिकारी द्वारा सक्रिय राजनीति संन्यास को घोषणा। तमेउला चुनौती गुण राष्ट्रीय परिषद बागमती प्रदेश को तेस्रो अधिवेशन धादिंग बस्ती में हुँदै

कसई का दास जिंदगी व्यथा पीर बगाएर छागा मा बग्स जिंदगी कसई को जिंदगी।

0: रुक लेना ढुक्को हूँ प्रभु माँ लक्ष्मी लाइफ इंश्योरेंस के अभिकर्ता बनो
1: प्रभु माँ लक्ष्मी लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड
2: समुदाय का लागी समुदाय का आवाज रेडियो धादिंग 106 मेगाहर्ट्ज़।

0: महालक्ष्मी लाइफ इंश्योरेंस के अभिकर्ता बनो।
1: प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड।
2: समुदाय का लागी समुदाय को आवाज रेडियो धादिंग 106 मेगाहर्ट्ज़।

ये सही करी हम सिवन सीमेंट ले पने क्वालिटी को मामला मा नो कंप्रोमाइज भन्ने हम लोग बाजा पूरा कर दे फिर ठाड़ो पारी रहेगा सदा सर्वदा सिवन सीमेंट क्वालिटी को मामला मा न

गब्बर नहीं न परने अनु हरकति सादा शिव जी लाई पार्वती कृष्ण जी लाई राधा बाड़ी की लौने।

0: सुन न गल्फ में एटा राम्रो मोबाइल गिफ्ट दिउँ भनेको ब्रान्डेड मोबाइल कहाँ पाउँछ होला है
1: त्रिमूर्ति छ नि छैन
0: मलाई एउटा घडी अनि घरमा रेडियो र आमाको मोबाइल पनि बनाउनु छ
1: त्रिमूर्ति छ नि छैन
0: या आफूलाई समस्या परिरहेको छ त्यो मजा गरेर बस्छ भने भन्नुहोस् न
1: मजाक होइन भने तेरो सबै समस्याको समाधान गर्ने ठाउँ त्रिमूर्ति मोबाइल हाउस पो भनेको त मैले ओरिजिनल तथा ब्रान्डेड मोबाइल सस्तो मूल्यमा छानी छानी किन्नलाई त्रिमूर्ति मोबाइल हाउसतिर
2: हामी कहाँ सैमसंग ओप्पो भिभो सीजी इन्टेक्स एमआई मैजू कलर्स लाभा एमटेक टेक्नो आइटम ब्रांड का मोबाइल घड़ी साउंड सिस्टम डिफोन पंखा तथा संपूर्ण इलेक्ट्रोनिक सामान पाइन का साथ ही पुरानो मोबाइल लीएर नया मोबाइल साटिं
3: त्रिमूर्ति मोबाइल हाउस धादिंगे सी मिलन टोल लेकाली टिकट काउंटर संगे प्रोपाइटर ईश्वर श्रेष्ठ संपर्क मोबाइल नंबर 98140063130 र 98131803007

0: मतलब तिरुमूर्ति मोबाइल हाउस तीर
1: हमी कहाँ सैमसंग ओप्पो भिवो सीजी इन्फिक्स एमआई मैजू कलर्स लाभा एमटेक टेक्नो आईटेल ब्रांड का मोबाइल घड़ी साउंड सिस्टम डिसोम पंखा तथा संपूर्ण इलेक्ट्रोनिक सामान पाइन का साथ ही पुरानो मोबाइल लीएर नया मोबाइल साटि
2: त्रिमूर्ति मोबाइल हाउस धादिंगेसी मिलन टोल लेकाली टिकट काउंटर संगे प्रोपाइटर ईश्वर श्रेष्ठ संपर्क मोबाइल नंबर 9841063130 र 9813183307
3: समुदाय का लागि समुदाय को आवाज रेडियो धादिंग 106 मेगाहर्ज।

0: झूठ होइन ढुक्क हुँ प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स के अभिकर्ता बनौ
1: प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड
2: समुदायका लागि समुदायको आवाज रेडियो धादिङ 106 मेगाहर्ज

0: मोबाइल सस्तो मूल्यमा छानी छानी किन्नलाई त्रिमूर्ति मोबाइल हाउसतिर।
1: हामी कहाँ सैमसंग, ओप्पो, भिभो, सीजी, इन्टेक्स, एमआई, मैजू, कलर्स, लाभा, एमटेक, टेक्नो, आइटेल ब्रांड का मोबाइल, घड़ी, साउंड सिस्टम, डिसोम, पंखा तथा संपूर्ण इलेक्ट्रोनिक सामान पाइन का साथ ही पुरानो मोबाइल लीएर नया मोबाइल साटि।
2: त्रिमूर्ति मोबाइल हाउस धादिंगेसी मिलन टोल लेकाली टिकट काउंटर संगे प्रोपाइटर ईश्वर श्रेष्ठ। संपर्क मोबाइल नंबर 98140063130 र 98131803007।